को बेता नास्ति मयेत कतसिनां कंति व्यारु सना पटेक संया नया मयस दुःखमेस्या। मानुषे जीवनेर उन्नतिर लक्ष्ये बहुशास्त्रे ज्ञान लाभ करा, शिल्प प्रतिष्ठा करा, विनयी ओ सुशिक्षित हवा एवं सुभाषित वाक्य बला, गौरवनीय व्यक्तिर गौरव करा, पंडित व्यक्तिर सेवा।